एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोपन भ्रष्ट गगन ते पई सबहिन आन बधाई दई धन्य धन्य लोगन के राजा दुस्तन दाह गरीब निवाजा अखल पवन के सृजनहारे दास जान महले हो उबारे।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किल्पिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जा पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेला। सुने गुंग जो याहि, सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट, न तिन नर की रहै, हो जो याकि एक बार चौपई को कहै। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को वांख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहै, हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कार, मैं न कहो सब तोहे बखान्यो। दोहरा

दीन के दाते मेरा गुण अवगुण नाम विचारो कोई माटी का क्या तुपै स्वामी मानस की गत एही तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसे आए गुरु।

विसरना ही दातार, विसरना ही दातार, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात।

का खोल डिठा खजाना तां मेरे मन पया निदाना। गुरु ग्रंथ साहिब दी साडे पिता समान ने, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी ने सानू साडे पुरखियां दा खजाना साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भाई गुरुदास जी कोलों गुरमुखी अखरां विच लिखा के साडे ते परोपकार कीता। ते साडे गुरु साहिबाना ने गुरमुखी दा एक एक अखर सवार के शिंगार के साडी झोली विच पाया। बहुत सारे शहीदां ने खून डोलिया इस बोली नू होंद विच रखण वास्ते, पर अज असी गुरमुखी पंजाबी मां बोली तो दूर हुंदे जा रहे हां। साध संगत जी, असी तां पंजाबी दे प्यारियां दा सुनेहा आप जी पास पहुंचा रहे हां। बेनती करदे हां, जे आप जी घर परिवार विच बच्चियां नाल पंजाबी विच गलबात करदे हो तां आप तंता दे जोग हो। जे कुछ कमी है तां अज ही इस पासे ध्यान दिओ। बच्चियां पास पंजाबी विच गलबात करन दा समां केवल घर विच ही होता है। अजकल दे स्कूलां दोस्तां मित्रां विच उन्हां नूं इह समां नहीं मिलदा। जरा सोचिए, जे बच्चे पंजाबी मां बोली नूं नहीं समझणगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना एक पासे रहा, वो गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त करनगे? गुरु नानक साहिब ते गुरु गोविंद सिंह दी नाल किवें संबंध जोड़नगे? आप जी वध तों वध जिन्नियां वी जवानां बच्चियां नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर साध संगत जी, पंजाबी मां बोली सिक्खी दा मुढ है, सिक्खी दा तुरा है, मां नूं ना भुलिए। कहिंदे ने ना, जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उस कोलों उस दी मां बोली खो लवो, पर असी तां अपने पैर ते आप ही खुआड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक साहिब जी ने अवतार तारिया मुगल राज दा समां सी, हिंदुस्तान दी जनता कमजोर ते नडाल हो चुकी सी। इस घातक वातावरण नूं देखदिआं बाबा नानक जी ने बचन उचारिया सी, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। इह हिंदुस्तान दी जनता नूं हलूणा सी कि क्यों घर घर विच मियां बने बैठे हो, क्यों अपनी बोली त्याग दित्ती है। महापुरश बाबा नंद सिंह जी दे बचन पढ़ी दे ने, कोई मेरियां अखां नाल तके गुरु ग्रंथ साहिब जी दा एक एक अखर गुरु नानक है। जे गुरमुखी आउंदी नहीं, जे पंजाबी आंदी नहीं, ते किवें गुरु नानक दे दीदार होणगे? साडा सभ्याचारक मां बोली तो बगैर अधूरा है। साडे ब्याह शादियां खाना पीना बैठना उठना जे मां बोली नहीं ते सब कुछ अधूरा है। साडी मां बोली गुरमुखी पंजाबी जो 35 अखरी गुरु अंगद देव महाराज जी ने साडी चोली विच पाई, अज साडा हाल देख के सानू ताना मार रही है। मुठ्ठां मीट के नुकरे रहां बैठी, टुट्टी होई रवाब रवाबियां दी, उच्छी सार ना जिन्हां ने सरफ मेरी, बे मैं बोली आ उन्हां पंजाबियां दी। जिवें रवाब टुट जावे ते रवाबी उसनू एक नुकरे खलार दिंदे ने, मैं इन्हां दी मां बोली हाँ, इन्हां दा सवा देख के थक टुट गई हाँ, इन्हां ने मैनू नुकरे खलार दिता है, ये मेरी सार नहीं लेंदे। मैं इन्हां दे गुरुआं पीरां दी सत्कारी हुई हाँ, पर अज पछमी सभ्यता देख के मेरी गोद विचों उठदे जा रहे ने। भाई गुरदास जी कहिंदे ने ना, मां दे नां प्यार तुल, चाचियां ताइयां
किन्ना भी प्यार देन, मां दी गोद दा निग कोई होर नहीं दे सकता। असी किसे भी बोली नू माड़ा नहीं कहंदे। अंग्रेजा नू अंग्रेजी मुबारक है, ये उना दी मात्र भाषा मां बोली है। जिस दी भी कोई मां बोली है उनू ओदी ओ बोली मुबारक है। पर असी इस ते माण करिए, साड़ी मां बोली गुरमुखी पंजाबी है। गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो। सजना मित्रां नू ये सुनेहा जरूर सुना दियो। पंजाबी बोलो, पंजाबी पढ़ो, पंजाबी सुनो। अगे गुरु नानक साहब दा अपना काम है, वो आपे ही सहाई होणगे।

सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहा गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सिरे तै अगंत तिनको मोह पया मन मद का 84 लख जोन उपाई रिजक दिया।

0: गुर प्रसाद पाइए परमारथ, सत संगत सेती मन खचना, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना।
1: अगम अनंत अनद आद जिसको

0: अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गहन समर्थ तारन तारन सब सोई। बनाना प्रकार जन जग कियो, जन मथुरा रसना रसै, श्री सत नाम करता पुरख गुरु रामदास चितै बसै। नाना प्रकार जन जग कियो, जन मथुरा रसना रसै, श्री सत नाम करता पुरख गुरु रामदास चितै बसै।
1: वाहेगुरु जी, गुरु समरथ गह करिया, प्रभ बुद्ध सुमत समारण को, फून त्रम तुजा फैरंत सदा, अग पूज तरंग निवारण को, मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कछु ना बिचारण को, हर नाम बोहित बड़ो कल में, पव सागर पार उतारण को, मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कछु ना

निर्मल नाम सदा परपूरन, शब्द तरंग प्रगटत तिन आगर, गहर गंभीर अथा अतबड, सुबर सदा सब बिदरित नागर, संत मिराल करे कंतूहल, तिंजम त्रास मिट।

जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै, जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावै, सोई रामदास गुर बलपण मिल संगत तन तन करो, जे सतगुर लग प्रभ पाया सो सतगुर सिमरो नरो, सोई रामदास गुर बलपण मिल संगत तन तन करो, जे सतगुर लग प्रभ पाया सो सतगुर सिम

नामे समस्ति स्वरूपे कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे वो जोग जोगेश्वर परम सिद्धे शस्त्र बाणे नमो अस्त्र माणे।

0: मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र
1: नमो
0: सदा सच्चिदानंद सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं

0: भगवती चंद तो प्रसाद करते कि आचिज देसे कि आ बिज पेसे
1: आ गज कर में के आ बज पर में
0: आ बिज लोके कि आ दित सोके
1: आ दूध भरने के बेबुत करने
0: के राजन प्रभा है कि तरमंग तु जा
1: के अशोक भरने के सरबा परने
0: के जगतन तिथि है कि छत्रंग छत्री
1: है के ब्रह्म स्वरूपे के अनुभव रूपे
0: कि आद अदेव है कि आप अपेव है
1: के चित्रण पहिने के अधीन है
0: के रोजी रजा के रही मेरे आके
1: पाक बैठे के गुल गए
0: ये फुल गुना है कि शाहन शाह है
1: गान पनिंदा के रोजी देंदा
0: के राजक रही में के कर्मं करी में
1: के सर्वंग तली है के सर्वंग दली है
0: के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने
1: के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
0: के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने
1: के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र पाओ
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: के सर्वत्र राजे के सर्वत्र पाले
0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
1: के सर्वत्र प्रेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
1: के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र भूख है
0: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण
1: है सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र माने सदैव प्रधान
1: है सर्वत्र जापी है के सर्वत्र तापी
0: है सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है
1: सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है
0: के सर्वंग कली में के परमंग फहीम
1: है कलाम है के साहिब कलाम है
0: उसल वजू है तमाम रजू है
1: असल सलाम है सली कुछ मुदाम है
0: गनीमुल शिकस्ते गरीबुल परस
1: है बदल मकान है जमीन उल जमान है
0: तमीजल तमाम है रजू अल निदान
1: है हरीफुल अजीम है रजाए के गीन है
0: अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है
1: अजीजल निवास है गनीम उतराज है
0: निरुकत स्वरूप है त्रिमुकत विभूत है
1: अंगुत प्रभा है संयुक्त सुधा है
0: सुदैवं स्वरूप है अपेदी अनूप है
1: समस्त पर राज है सदा सर्वसाज है
0: समस्त सलाम है सदैव अलका
1: निर्वास रूप है अगाध है अनूप है
0: ओंगाद रूपे अनाथ स्वरूपे
1: अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे।

0: सर्वं कर्म सर्वं कर्म
1: सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता
0: सावल चंद्र प्रसाद नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशे
1: अनंगं स्वरूपे अपंगं बभूते
0: परमातं परमाते सदा सर्व साते
2: अगाध स्वरूपे निर्वाज बभूते
0: अनंगीय नामे दिवंगी ते कामे
2: निर्वंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
0: पुत्रे न सत्रे न मित्रे
2: न दाते न माते न जाते न पाते
0: साकं सरी के मितो मी के
2: सदैवं प्रभा है जय है जाहे भगवत शांत है प्रसाद के सहर जहूर के हाजिर जूर है।

0: राजे गरीब निवास है, खुश कन्हे रासुल सिकंदर परनास है, समस्त निवास है, समस्त जुबा है कि साहिब करा है, के सर्व गवन है, अमेस रवन है, परम परमी से समस्त लदीस है, जमीनो जमा है, अमी कुल मा है, चलंग प्रकाश है कि मितो सुबास है, मतो पसा है कि आत्म प्रभा है, मतबार शांत है प्रसाद, मन मन प्रणाम गुण गण मुदा, अंगन प्रणाम मन मन सलाम, अनुभवनास मन मन प्रकाश, अनचिज अंगा सन पंग, जल मंड दिस्व सपंड, अनुभवनास त्रितर तुरास, ओंकार आदि गति अनाद, कर प्रणाम चित चरना, अनचिज गात अनरज बात, अतटीट तरमत टीट कर्म, हर बोल मना शांत तुए प्रसाद, करनाले है रकाले है, जिते सुरंग है परमेश्वर है, जिसके तरन है जब के करण है, सर्वंग पर है सर्वंग कर है, नाकर है विश्वंबर है, मंड सकल खंड है, जपा जपे थपा थप है, अमृत अमृत कर्ण कृत है, अमृत सुरंग है परमेश्वर है, अजबा कृत अमृत अमृत है, विश्वंबर है करणालय है, पंजन है रंजन है, कृत है सर्वा कृत है, परमात्म है सर्वात्म है, जंग प्रयात शांत, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्र,
1: नमो इंद्र,
0: नमो अंधकार, नमो तेज तेज,
1: नमो बीज,
0: नमो राज संताम संग शांत रूपे,
1: परम तंग तंग स्वरूपे,
0: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञान, नमो युद्ध युद्ध, नमो ज्ञान ज्ञान, नमो कला कर्ता, नमो शांत रूपे, अलंकार रूपे अलंकार अलंके, अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, एक श्री शांत जय अले अपे अबे, अगंज पंज लख पख, अनाम काम गाठा, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, भुजंग प्रयात शांत, नमस्तु प्रणामे समस्तु प्रणासे, सामंग बबुते समस्तु स्वरूपे, सदा सचदानंद सतरंग प्रणासे, अजाय बबुते जाय गनी में,
1: करीम
0: चक्र

0: जित किए
1: तब चंदन मन रे हमारा अपना जान करो प्रत पारा
0: मैं दूसरे दूंगा वो आप हाथे मुए बचाओ
1: सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिख सबे करता रहा
0: और अच्छा निष्कते करिए सब रिंग को आशन करिए
1: पूरन हुए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा
0: मैं शायद को हमने दिया हो जो वो चो सो तुम ते पाओ
1: सेवक सिख हमारे तारिये चुम चुम सत्र मारे मारिए
0: आप हाथे मुझे बढ़िए मृण काल का त्रास मरिए
1: पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करे और अच्छा
0: राख ले मैं रखने वाले साहिब संसाए प्यारे
1: दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दश कंता
0: काल पाए ब्रह्म भवसर काल पाए शिव जी भवसर
1: काल पाए कर विसर प्रकाशा सकल काल का किया तबासा
0: दोन काल जो की सुखी हो वेद राशु नो ज्योति हो
1: जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा
0: जवन काल सब जग बनायो देव देश बजायो
1: आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा
0: नमस्कार तुसी को हमारी सुख जाजन आप सवारी
1: सिंगन को सब गुण सुखती हो संतरण को पल मोहबत की हो
0: काट काट के अंदर की जाने थुल वरे की पेर पिशाने
1: चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृश कर फूला
0: संतन दुख पाए की सुख पाए सुरंगे सुखी
1: एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने
0: जबत कर कर कर प्रजा तब दे पारा
1: जब कर कर तो कबू तुम्हें मिलत दे तर सब
0: जेते वृंद से सब दारे आप आमी बुझ उचारे
1: तुम सभी ते रहत निरालम जानत बेद पेद अरालम
0: नरिं काने काने लम आद नील नाद संव
1: ताका मूल उचारत पेदा चाको पेव न पावत पेदा
0: ताको कर भाने मारे स्मा मूर्खश पेद न जाने
1: महादेव को कैद सदा से निरंकार का चीलत नहीं पेवल
0: आप आमी बुध है जेती मन पिन पिन दे देती
1: तुम्रा लखा न जाए पसारा कैबिन सजा प्रथम संसारा
0: एके रूप नूप सुरूपा रंग पियो राव के ऊपर
1: अंडा जेल से तजकीनी उपज खान बहुत रसीनी
0: कौन फूल आ जा बेटा कौन सी हो पसंद कर क्या ता
1: सगरी सृष्टि खाए अचंबो आज बात रूप से अमर
0: रक्षा मिली तुम करो सिख बार सिख संगर
1: गुरु जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता
0: जय श्री शम सुनने परे तिनके दुष्ट को तुम मरे
1: गुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब डारे
0: जो को कोई बात या है ताके काल गिनी आए है
1: अच्छा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला
0: कृपा दर्शन जानार हो ताके ताप नहीं मार हो
1: रित सिद्ध कर मौसम हो दुष्ट छाछ छह सके न कोई
0: एक बार जिन में सुबारा काल फास्ते ताहे बारा
1: जिन नाम तिहारों का दार दुष्ट दोते

0: वंश करा पूरन सब्राता
1: किल में सकल दे को हरता दुष्टों की उनको छे करता
0: श्री शिव जबरियाला पूरन ग्रह गंधुत काला
1: मन बाचक फल पावे सोई दुगुना तिसे व्यापत कोई अड़िल
0: उसने गुंजा यास रसना पावे उसने मोच लचतता आवे
1: दू गर्द को निकट न तिन्नर के रहे हो जो या की एक बात जो पई हो गए जो पई
0: समचित्र सैस नीज सैस नीन की जय
1: पादुक सदी अश्वी रविवार तीस दर ग्रंथ सुधारा सैया
0: पाएंगे जब ते तुमने तब ते कौन त्रेन यानी हो
1: राम रही पुराण पुराना ने कहे मत एक दमानियो
0: सुने सास वैसो वेद के में एक न जानियो
1: श्री इस पान कृपा तुमरी कर मैं न के वो सब तुम्हें बखानियो दोरा

0: मन मेरे तू सदा रोह नाले
1: करुणा रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
0: अगी करो करे तेरा कार्य सब सुहाना
1: सबना गला सिमरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे
0: कहे नानक मन मेरे सदा रोह नाले
1: साचे साहिबा क्या नहीं करते रे
0: करता तेरे सब कुछ है जिसे सो पावे
1: सदा शिव सला तेरी नाम मन विसावे
0: नाम जिनके मन से आवाजे शब्द गने रे
1: कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे
0: साचा नाम मेरा आधार हो
1: साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइयां
0: कर सांत सुख में नाय वसे जिन इच्छा सब पुजाइयां
1: सदा कुर्बान किता गुरवितो जिस दे बढ़ियां
0: कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार हो
1: वाजे पंच बतित कर सबागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
0: पंच तुत दुआस कीते काल कंटक मारिया
1: दुर्कर्म पाया तू जिनको से नाम हर के लागे
0: कहे नानक तैसु को अतित कर अनद वाजे
1: साची लिवे बिंदेन मानी देन मानी लिवे बाजो क्या करे बेचारिया
0: उपाय सम्राट कोई ना है कृपा कर बनवारिया
1: इस नो हो था ना है सबत लाग सवारिया
0: कहे नानक लिवे बाजो क्या करे बेचारिया
1: आनंद आनंद सबको कहे आनंद गुरु ते जानिया
0: जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया
1: कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया
0: अंधो जिनका मोह टूटा तिनका सबत सचे सवारिया
1: कहे नानक ए आनंद है आनंद गुरु ते जानिया
0: बाबा जिस तू दे सोई जन पावे
1: पावे ता सो जन दे जिसनो होर क्या करे बेचारिया
0: एक परम पुले फिरे दैदिस एक नाम लाख सवारिया
1: गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिन्ना पाना पावे
0: कहे नानक जिस दे प्यारे

0: नानक सुनो संतोषो सिख सन्मुख होए
1: जे को गुरते वे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे
0: पावे मुक्त ना होते कोई पूछो विवेकिया जाए
1: अनेक जुनी भरमावे बिन सतगुर मुक्त ना पाए
0: फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए
1: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए
0: आओ सिख सतगुरु के प्यारियो।

0: सिर्फ सकता आप उपाय के करता आप ही हुक्म बुझा
1: हुकम वरताए आप देखे गुरमुख किसे बुझाए
0: तोरे बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए
1: गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे कस्यो लिवलाए
0: कहे नानक आप करता आपे हुकम बुझाए
1: सिमरन शास्त्र पन

0: क्यों मनो विसारिए,
1: मनो क्यों विसारिए, एवढ़ दाता जे अगन में आहार पहुंचावे,
0: उसनो क्यों पोए ना सके, जिसनो अपनी लिवलावे,
1: अपनी लिवा पे लाए गुरमुख सदा संभालिए,
0: कहे नानक एवढ़ दाता सो क्यों मनो विसारिए,
1: जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया,
0: माया अगन सब एको जे ही करते खेल रचाया,
1: जात इस बाणा ता जमया परवार भला पाया,
0: चुरकी लगी तृष्णा माया अमर वरथाया,
1: ए माया जिधर विसरे मोह जे पाओ दूजा लाया,
0: कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिने विछे माया पाया,
1: हरे आप मुलक है मुल ना पाया जाए,
0: मुला पाया जाए किसे विटो रहे लोक बिललाए,
1: ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनु सिर सौंपिए विचों आप जाए,
0: जिसदा ज्योतिष मिल रहे हर वसे मन आए।

0: संते
1: तू ठाकुर तुम पिंड सब मात पिता हम बारिक ते तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत उचेते सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते है तुमरी गात मेत तुम ही जानी नानक दास बोल जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिरंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस रिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आए घर नौने दया वै ताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी।

हरी करहु हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम का वह आप हाथ दै मोहि बचाव सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख्या सबै करतारा सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज दर्शन परसेय गुरु के जन्म मरण दुख होवै सिफत खसम दी नूर अरसाह गुरसाह चटी तुद डिठे सचे पात साह माल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पात साह सिर साहांदे साह जिस पास बैठिया सोहिया